नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आज दिन है शनिवार, शक संवत 1948। ज्येष्ठ माह की आज दूसरी तिथि है और साथ ही अंग्रेजी सन 2026 मई महीने की आज है 23 तारीख। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:59 हो चुके हैं। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज की हमारी पहली सभा में।

0: आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के जरिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को

शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है ये। और श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं हम आज की हमारी पहली सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 6:10 से। विमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग, महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे सुबह 6:30 से। सुबह 7 हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आज का दिन आप सुन पाएंगे सुबह 7:05 पर, और उसके बाद बीट्स ऑफ हार्ट कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 7:30 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे सुबह 8 समाचार प्रभात, और उसके बाद देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह

कार्यक्रम सुरों की रंगोली, इसका प्रसारण सुनेंगे आप सुबह 8:40 पर। पुआर आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे सुबह 9:00। श्रोताओं, आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से ही आप सुन पाएंगे हमारी पहली सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम सुबह 9:15 से, जिसमें सबसे पहले खेलमा कार्यक्रम में भक्ति गीतों का आनंद आप लेंगे। आज गायक कलाकार आज है जामखान थंगा लुशाई और साथी। उसके बाद रंगखोल कार्यक्रम में पारंपरिक गीत स्वान चौनली रंगखोल और साथियों की आवाज़ों में सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे। सुबह 9:35 पर समय रहेगा जयंतिया कार्यक्रम का, भक्ति गीत एबोर बास्टिंग लाखियांग और साथियों की आवाज़ों में। और उसके बाद बीएते कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:45 से, आधुनिक गीतों का आनंद आप लेंगे आज बीएते कार्यक्रम में। गायक कलाकार आज हैं थियांगी गामलाई और उनके साथी।

श्रोताओं, आप सुनेंगे पहली सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के पश्चात सुबह 10 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये प्रसारण आप सुन पाएंगे शाम 5 बजे तक, और विविध भारती के कार्यक्रमों के प्रसारणों के बीचों बीच आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब आइए हम आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से भक्ति संगीत के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे और आज के लिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या क्या क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार।

वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स का आनंद आप ले रहे थे आकाशवाणी के हाफ लॉन्ग केंद्र से। अब से कुछ ही देर में श्रोताओं आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित।

0: श्रोताओं, अब सबसे पहले सुनते हैं हम आज की कविता पोएम ऑफ द डे, जो कि प्रस्तुत करेंगी वंदना सिन्हा।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है वंदना सिन्हा और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शौक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वो टूट गया तो टूट गया। मदिराले के आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिराले पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।

श्रोताओं, पोएम ऑफ द डे में आज आपने सुना इस कविता को हरिवंश राय बच्चन द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया था डॉन बोस्को हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलोंग से वंदना सिंघा ने।

श्रोताओं, अब आगे की जानकारियों में आपको बता रहे हैं हम आज के दिन यानी कि 23 मई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज 23 मई का जो इतिहास है, देश विदेश के इतिहास में 23 मई को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आज 23 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आपको बताएंगे और 23 मई को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।

सबसे पहले बात करते हैं श्रोताओं, सन 1420, आज ही के दिन यहूदियों को ऑस्ट्रिया और सीरिया से निकाला गया था, और साथ ही सन 1785, आज ही के दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पत्र में लिखा कि उसका आविष्कार द्विभाषी था। दक्षिण कैरोलिना को 8वें राज्य के रूप में अमेरिकी संविधान में आज ही के दिन 23 मई को सन 1788 में शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वैलेजली, उन्होंने सन 1805 में आज ही के दिन एक आदेश के अंतर्गत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था भी की थी। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने सन 1879 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में पशु चिकित्सा स्कूल स्थापित किया था। 23 मई सन 1879 आज ही के दिन। साथ ही अमेरिकी सेनाओं ने फिलिपिनो के विद्रोही नेता एमिलियो एग्यूनाल्डो, उन पर सन 1901 में कब्जा किया था आज ही के दिन। सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के समय आज ही के दिन इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।

सन 1923 बेल्जियम ने सन 1923 में सेवना एयरलाइंस बनाया था आज के दिन। फ्रांस की सेना ने सन 1926 में मोरक्को राइफल्स राजधानी पर कब्जा किया था 23 मई आज के दिन। ब्रिटेन की संसद में फिलिस्तीन को सन 1949 तक स्वतंत्र कराने की योजना आज के दिन सन 1939 में की गई थी। पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद सन 1949 में आज के दिन औपचारिक रूप से ये अस्तित्व में आया था। इज़राइल ने सन 1960 में आज के दिन अर्जेंटीना में नाजी एडोल्फ इकमैन पर कब्जा करने की घोषणा की थी आज के दिन। बेनिन ने सन 1977 में आज के दिन संविधान को अंगीकार किया। बचेंद्री पाल, हम सभी ने उनका नाम सुना ही है, बचेंद्री पाल, उन्होंने सन 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली वो आज के दिन सन 1984 में पहली भारतीय महिला बनी थी। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारी प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर वीटो किया था सन 1986 में 23 मई आज के दिन। साथ ही सऊदी अरब में भगदौड़ में से 270 तीर्थयात्रियों की मौत हुई आज के दिन 23 मई सन 1994 में। रोमन हार्जोंग जर्मनी के राष्ट्रपति बने, वो चुने गए थे सन 1994 में 23 मई को। योहानिस रो संघीय जर्मनी के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए आज के दिन सन 1999 में। पाकिस्तान का भारत को MFN का दर्जा देने से पुनः इनकार साल 2001 में आज के दिन किया गया था 23 मई को। बांग्लादेश में तूफान के कारण मेघना नदी में नाव डूब

डूबने से 250 लोगों की मौत हो गई थी आज ही के दिन 23 मई को। और आज ही के दिन साल 2004 में सिंगापुर में जहाज के टक्कर से टकराने के कारण 4000 कारें डूब गई थी।

तारकुल द्वारा निर्देशित थाईलैंड की एक फिल्म अंकल बॉनमी ह्यूकेन रिकॉल हिस पास्ट लाइफ। इस फिल्म को सबसे बड़े पुरस्कार पाम द ऑर से सम्मानित किया गया 23 मई 2010 में। मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहना साल 2010 में आज के दिन अपराध नहीं माना। सर्च इंजन गूगल ने अपने प्रोजेक्ट भवक के उपयोग के लिए मकानी साल 2013 में इसकी शक्ति हासिल की थी 23 मई आज के दिन। रूस और चीन ने सीरिया में युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का प्रयोग आज के दिन 23 मई को साल 2014 में किया था। और भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLVTD को साल 2016 में आज के दिन 23 मई को लॉन्च किया था।

आगे की जानकारियों में श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था 23 मई आज के दिन, जैसे कि जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी जी, उनका आज के दिन जन्म हुआ था 23 मई को साल 1919 में। साथ ही राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म भी सन 1923 में 23 मई के दिन आज के दिन हुआ था। और पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एलन गार्सिया जी, उनका भी जन्म सन 1949 में हुआ था 23 मई को। तेईस मई को कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन भी हुए थे, जैसे कि सितारे बहत शिव प्रसाद, उनका निधन सन 1895 में हुआ था 23 मई को। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार तथा पुरातत्व वेता राखालदास बंद्योपाध्याय जी, उनका निधन सन 1930 में 23 मई आज के दिन हुआ। नक्सली आंदोलन के जनक भारतीय कानू सान्याल जी, उनका निधन साल 2010 में आज के दिन हुआ था 23 मई को। तेलुगु चलचित्र गीतकार वेतुरी सुंदरम्मा मूर्ति जी, उनका निधन साल 2010 में 23 मई को हुआ था। एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक चंद्र बली सिंह जी, उनका निधन साल 2011 में हुआ था आज के दिन 23 मई को।

आपकी गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपकी गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम बातें करते हैं, कुछ प्रेरणादायक बातें करते हैं और साथ ही आपको सुनवाएंगे हम कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत भी। सबसे पहले

जीवन के कठिन डगर पर चल के उसे पार कर ले, ये तो दरिया है, तू समुंदर से प्यार कर ले। नशा बन के रगों में दौड़ता है जो जुनून, तुझ में वो है, बस एक बार खुद पर एतबार कर ले।

समय लगे जब विरुद्ध भागने, लगे चारों तरफ भय जागने, काले वन में जुगनू भर सी जीवित एक आस रखना, खुद पर बस विश्वास रखना।

मन मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत। मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

बीते हुए पल कभी लौट के नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। खो दो तो याद है, जी लो तो जिंदगी है।

वही हूँ तेरे साथ, मैं हर पल तेरे पास, मैं कभी तेरे ख्वाब में तो कभी तेरे ख्याल में, तुझे होने वाले हर एहसास में, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में, मैं हूँ वही तेरे करीब तेरे पास में।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है और श्रोताओं आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
3: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
9: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्य दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
10: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विशा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विशा का 10 दिन फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करे WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है,
12: मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
13: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की चार दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: समाचार प्रभात का प्रसारण

नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं हम कार्यक्रम शुरू की रंगोली। आज इस कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के गाए बेहतरीन फिल्मी गीतों का आनंद हम लेंगे।

जाम खान थांगा लुशाई और साथियों की आवाज़ों में खेलमा भक्ति गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। इसी के साथ ही आज का खेलमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए अब बारी आती है रांगखोल कार्यक्रम की। आज हम सुनेंगे पारंपरिक गीत, गायक कलाकार हैं सुवन चौनली रांगखोल और साथी।

रंगकॉल पारंपरिक गीतों का आनंद आप ले रहे थे स्वन चौनली रंगकॉल और साथियों के गाए। इसी के साथ ही आज का रंगकॉल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, पहली सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हफलोंग केंद्र से। और अब सुनते हैं, आइए, जयंतिया कार्यक्रम में भक्ति गीत। गायक कलाकार आज हैं इबोर बास्तिंग लाकियांग और उनके साथी।

रथी जयंतिया कार्यक्रम में भक्ति गीत इबोर बास्तिंग लाखियांग और साथियों की आवाज़ों में, और आज के लिए जयंतिया कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पहली सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से। अब सुनते हैं बीएते कार्यक्रम। आधुनिक गीत हम सुनेंगे थियांगी, गामलाई और साथियों के गाए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे थियांगी गामलाई और साथियों की आवाज़ों में बेती आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का बेती कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और बेती कार्यक्रम के साथ ही समाप्त होती है आज की पहली सभा के स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब समय हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: दिल की दुआएं लेती जा जा तू।

उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

0: कर लो।
1: मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपये की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपये नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी।

0: सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम?
1: मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं।
0: लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई?
1: एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है।
0: तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा।
1: मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नज़र संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज़ वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहाँ खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

0: संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिखकर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की

0: रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली, इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन।

ग्यावस थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो।

मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और न जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।

जी हाँ, मिला है किसी का झुमका। तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज़ लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलिल चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में ज़रूर सोचा है। वही गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं काफ़ी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं। और यहाँ के झुमके देखने में जितने बड़े भारी और आकर्षक होते हैं ना, असल में उनका वजन बहुत हल्का होता है। और कारीगर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भारी डिजाइन वाले झुमके भी कानों में चुभे बिना आराम से पहने जा सके। तो चलिए खरीदते हैं ये बरेली का झुमका।

0: जी, तो मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये था राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आशा भोसले की आवाज़ थी और ये फिल्म थी मेरा साया। बहुत सारी फिल्मों में झुमकों पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, फिल्माया गया है। और झुमकों की जो दुनिया है ना दोस्तों, भारत की तरह ही विविधतापूर्ण है। हाँ, जहाँ हर क्षेत्र अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल से इन सदाबहार झुमकों को एक नया आयाम देता है। चाहे आपको बड़े सुनहरे झुमकों की भव्यता पसंद हो या स्टड झुमकों की सादगी भरी खूबसूरती, हर पसंद और अवसर के लिए एक न एक डिज़ाइन मौजूद रहता है। जैसे जैसे फैशन के रुझान बदलते हैं, वैसे वैसे फैशन की प्राथमिकताएं भी विकसित होती रहती हैं और हमारी रुचि भी पनपती रहती है। हाँ, एक बात स्थिर रहती है, वो क्या? वो ये कि नारीत्व, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में झुमकों का जो आकर्षण है वो हमेशा नारी के मन में बना रहता है। और जब हम झुमका शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लासिक घंटी के आकार के, आमतौर पे सोने चांदी या बारीक कारीगरी से भरपूर झुमके याद आते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल झुमके भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो कोई भी झुमका अपनी पसंद का ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये याद रखिएगा, पारंपरिक झुमके कभी पुराने नहीं होते।
1: ओए होए होए, कान में झुमके, कान में झुमके, जाल में ठुमके, नैनों में जाल है, हाथ में छल्ला, सर पर पल्ला।

निगाहों ने मार डाला है जान मन तेरी, निगाहों ने मार डाला, निगाहों ने मार डाला होए होए। धूप है चंदा, जुल्फ है फंदा, बंदा बेहाल है, हाथ में छल्ला, सर पर पल्ला।

तेरे बिन दिल का ये बंगला पड़ा है सोना, ये बंगला पड़ा है सोना, तेरे बिन दिल का।

जी हाँ, ये गीत फिल्म पायलट ऑफिसर से हमने लिया था और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, रोशन की धुन थी। तो बात चल रही है आज झुमकों पर, और झुमके तो कई तरह के डिज़ाइन और स्टाइल में आते हैं और हर मौके और आउटफिट के अनुसार चुने भी जाते हैं। जब बात स्त्री की आती है, औरत की पसंद की आती है, तो नारी इन झुमकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। और ट्रेंडी झुमके बहुत तरह के बाज़ार में हमें मिलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने कहना चाहिए आउटफिट में धारण कर सकते हैं। जैसे चांद वाली झुमका, ये चांद के आकार का होता है और इसके नीचे सुंदर घुंघरू या मोतियां लटकी होती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छा लग सकता है। टेम्पल झुमका, ये साउथ इंडियन स्टाइल के झुमके होते हैं जिन पर देवी देवताओं या पारंपरिक आकृतियों की नक्काशी भी होती है। एक मीनाकारी झुमका है जिन पर रंग बिरंगे फूल और डिज़ाइन की पेंटिंग या नक्काशी की जाती है। एक आता है लेयर्ड झुमका, इनमें एक के नीचे एक कई परतें, लेयर्स या घंटियां लगी होती हैं और एक भारी और भरा हुआ लुक देती हैं। कुंदन और पोलकी झुमके भी आते हैं और ये राजस्थानी और मुगल स्टाइल के शाही झुमके होते हैं जिनमें कीमती पत्थर और रत्नों का काम होता है। इसके अलावा मल्टी चेन झुमका, इसमें झुमके के साथ एक चेन जुड़ी होती है जो कान के ऊपरी हिस्से में पिन हो जाती है, जिससे कानों को एक भारी लुक भी मिलता है और कानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा डेलीवियर झुमके, जिन्हें आप रोज़मर्रा के काम में पहन सकते हैं। अगर आप हल्का और छोटा झुमका पसंद करती हैं तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे होते हैं झुमके। और मोती झुमका यानी पर्ल, ये क्लासी होता है और एलिगेंट होते हैं, जिनमें सफ़ेद या रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तरह के झुमके बाज़ार में मिलते हैं। ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह की डिज़ाइन इन झुमकों में पसंद है। पर हाँ, देखिए ना, आपको चाहे कोई भी झुमका पसंद हो, लिखने वाले ने यानी फिल्मी गीतकार ने झुमकों के बारे में बहुत खूब लिख दिया है।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: दोस्तों, हमारी फिल्मों में, हमारे फिल्मी गानों में हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हमें हर गहने पर कई फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं, पैरों से लेकर सिर तक न जाने कितने महत्वपूर्ण अलंकारों पर हमारे गीतकारों ने गीत लिखे हैं। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं झुमके की, साथ ही अगर हम बात करें पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल की, तो ये भी एक लोकप्रिय आभूषण है जिस पर काफ़ी गीत लिखे गए हैं। नहीं नहीं, हम आपको पायल से संबंधित कोई भी गीत नहीं सुनवा रहे, फिलहाल तो हम आपके लिए आज झुमका ही लेकर आए हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने सारे अलंकारों पर हमारे फिल्मी गीतकारों ने इन गीतों को लिखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्परा को यूँ आगे बढ़ाया।

0: उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: कहते हैं झुमका गिरना आसान है, लेकिन झुमके को ढूंढना बहुत गंभीर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एसडी बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे फिल्म जुगनू के लिए। तो बात चल रही है झुमकों की। अगर आज के इस माहौल में हम बात करें तो बहुत तरह के झुमके हमें फैशन के तौर पर मिल सकते हैं। ऑफिस के लिए अगर हम चाहें तो हल्के झुमके जो रोजाना हम पहन सकते हैं, छोटे छोटे झुमके लाइट वेट गोल्ड के या जो है आर्टिफिशियल झुमके भी आप पहन सकते हैं, पसंद किए भी जा रहे हैं। कुंदन के, पर्ल के, शादी लहंगे, शादी में खास तौर से लहंगे और खास जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप कुंदन का वर्क किए छोटे छोटे मोती जड़े जो है झुमके भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सुई धागा ईयरिंग्स भी मिल रही हैं, और ये जो डिज़ाइन है लंबी पतली चेन और नीचे छोटे डिज़ाइन के साथ साथ आती है, जो इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह का लुक देती है और हमें अच्छी भी लगती है। खासतौर से यंगस्टर्स के कानों में तो ये बहुत अच्छी लगती है, और कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और कैजुअल जो आउटिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो काले और सिल्वर मेटल के बड़े झुमके मिरर वर्क वाले भी पहन सकते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, हिंदी में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए पूर्ण एक बार आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को, जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खय्याम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती हैं ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की। फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

0: श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।

0: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 10% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता, हिंदी में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें ये भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है इबारत में शब्दों को ढूंढकर।

कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूँ कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे। बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक ही ढूंढ पाया हूँ। बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ, कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है। ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है। खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां, मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमागी कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मिल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं, बिल्कुल आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, देखिए कौन कौन से गाने हैं बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया समझो। अरे वाह क्या बात है।

वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है। आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी। कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आ रहा फिल्म का, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं। जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं। आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत, पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाए वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डाले, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है। और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज़्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफ़र की पोस्ट का इंतज़ार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफ़र की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को, शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज़ में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफ़र में तो सफ़र सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बहार आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा। चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है। इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की

फिल्म में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजे हम तुम, और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है, गर्जत बरसत सावन आयो रे, और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचित धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है, और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को, और आएगा हमारे गाँव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है, और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांदरे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी का हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारी मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना

0: विद्यार्थी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रिबियासिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में

0: प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए पूर्ण एक बार आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को, जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी एस एन त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें थीं। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।

0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आशा भोंसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं PL संतोषी और संगीतकार N दत्ता।

0: कोई मारे कोई किसी को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके सांस।

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमती, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैकियों की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।
1: तेरे दर पे आया हूँ।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये

और सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजे, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु। यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लो इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी। महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें यह संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामंत, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए, और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओह, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे, और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं।
1: दीदी,
3: कौन?
1: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
3: ना,
1: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
3: स्वामी, मेरे देवता।
1: सच
3: मैं तुम्हारी पुजारी।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुझ कितनी सुंदर हो।
4: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी
4: बलपूर्वक
1: पागल चकोर
4: अपनी विशाल सेना
1: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही।

0: राजा ने
1: स्वामी
0: हमारे महाराणा से
1: इस पागल पर
0: सहायता की
2: रानी,
1: और सुनिए
2: महाराणा के तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
1: स्वामी
2: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूं, मुक्त हूं।
1: सुना आपने?
2: इधर
1: स्वामी।
2: प्रिय
1: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
2: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी अप्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई है?
1: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
2: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
1: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
2: प्रियतम मैं
1: प्रियतम
2: मैं
1: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
2: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो, विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था, तुम्हें जी भर कर निहार भी ना सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
1: स्वामी यह केवल आपका मोह और वासना है।
2: रानी
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
2: रानी
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
2: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ, मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी, क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठी और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
2: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती हूँ।
2: ठहरो रानी,
1: यह हरवंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
2: रानी ठहरो।
1: नहीं
2: रानी सुनो तो।
1: नहीं सामंत, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था, रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधोर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर ये कलंक का टीका नहीं सह।
2: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी, एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी, कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में पड़ी तड़प रही है।
2: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
2: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा, तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ, सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: ना, ना।
2: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
1: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी, आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
2: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी, विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई, आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कह रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
3: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ।
2: पगली, रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिकता कर, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे।

दर्पण ना, दर्पण इधर ना। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है? ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शेष रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी कर ला कृपाण। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना और कहना कहना रानी ने ये विजय मान समझ के लिए दी है। विजय मान।

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामंत तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह जी, क्या लाए हो?
3: हाड़ी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी तुम साक्षात भवानी थी।

0: मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो, मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो, विजय हमारी है,
1: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
0: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
1: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
0: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
2: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
0: रानी, सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो। रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
3: जी सामंत।
0: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
3: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार सुगमता के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे मंगलवार को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: किलोमीटर दूर है ये, बसारी
1: अच्छा
0: 15 रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा,
1: ओके। तो
0: बहुत ही छोटा सा गांव है सर, बहुत ही।
1: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ
0: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक,
1: अरे वाह,
0: जीजाओरे की सीडी। झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था
1: अच्छा,
0: उसका।
1: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस
1: लोकगीत?
0: पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया,
0: उंगरिया,
1: क्या
0: मतलब है
1: बात
0: ना,
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा के
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड,
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ,
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आ गया, मतलब बहुत
1: तो।
0: मजा आ गया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा,
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाबा
0: मैं 9th क्लास
1: रे,
0: में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम वो
1: है।
0: करते छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये?
0: हम बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे ही शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूर ही है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ,
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना
0: हैं,
1: के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज़ आते हैं, गोरे, 5-स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पर 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें
1: वाह,
0: कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया,
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अब ये
1: बात
0: मुझे
1: है।
0: पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे,
0: जी जी
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम गाना सुनता।

0: मोहब्बत का मारा तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है।
0: तो ये कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल, वो एक जहन
0: जैसे
1: में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही।
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा है
1: करें।
0: फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है।
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय
1: मुलाकात होती
0: होता
1: है।
0: है,
1: जी
0: जो तब तक NSD में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए,
1: दिखाई दे।
0: और वो एक शिविर लगाते हैं
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँचना है।
0: उसके आगे क्या होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुँचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए, कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में मैं ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है, और मैंने वहां से निकल

0: तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
1: हाँ वो छोटा
0: छोटे
1: वाला,
0: वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
1: हाँ
0: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, बस
1: रिकॉर्ड कर दो,
0: इसमें रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
1: अरे
0: तो
1: गजब,
0: तुम अनुशासित
1: उसने
0: हो,
1: 1 मिनट में सब बोल
0: सब
1: दिया।
0: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो।
1: हाँ
0: तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है, मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो
0: तो मैंने
1: कॉलेज
0: कॉलेज
1: किस
0: में,
1: शहर में था?
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सत्यनाग का नाटक किया,
1: बिल्कुल,
0: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें, उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको? कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर या आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल,
0: आप जानते होंगे बहुत बढ़िया
1: हाँ
0: कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप।
0: तो हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन करता था, वो मैं पागल कर देता, भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलखनंदन सिन्हा जी, मैं
1: गजब,
0: अलख दादा से उनसे मिलवा
1: हाँ
0: दूंगा, पर
1: हाँ
0: वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूँ और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा,
1: बिल्कुल,
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए, मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पर खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर।
0: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छूए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया।
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने बोला
1: अच्छा
0: कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदेले हो, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
1: हाँ
0: और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख लें। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं,
1: अरे
0: बड़े बड़े
1: बाप
0: मैंने
1: रे।
0: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर, वैसे
1: अरे
0: मैं
1: बाप
0: बहुत
1: रे।
0: कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
1: ज्यादा
0: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई

0: हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं हैं, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं हैं, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा मैं, आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा। तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूँ आपको,
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा
1: वाह
0: मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिच रही खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
1: वाह
0: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लेबुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: शानदार है।
0: दद्दा
1: वाह
0: मोखा
1: वाह
0: मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है,
1: वाह
0: कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लेबुआने,
1: वाह वाह
0: मोखा अपने
1: वाह
0: मौसिया से गुब्बाड़ो लेबुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज ते
1: वाह
0: 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: क्या
0: दद्दा
1: बात है।
0: मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: वाह
0: दद्दा
1: वाह
0: मुखा मेला जाने।
1: कहते हैं
0: क्या क्या बचपन है उस समय, ये
1: देवेंद्र
0: बुंदेलखंड के कभी गानों में, कभी
1: ये
0: जो
1: होता
0: राइटर
1: था
0: होता था उसका नाम छाप
1: बिल्कुल।
0: बोलते थे उसे,
1: हाँ
0: छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहाँ से ही मेरा साहित्य के बारे में, शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपये का, 5 रुपये का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीज़ें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस
0: वहाँ
1: ये
0: से
1: खाना हो गया।
0: खाना हो गया, और वहाँ से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहाँ पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुँचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में मैं, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत ख़राब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे, और मेरी भाषा बहुत ख़राब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पर गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, मैं कहा यार
1: हाँ
0: ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पर कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे तो उस नाटक में हम उज्जैन में हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: से शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए,
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पता चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकार का गाना,
1: ओंकारा का गाना
0: ओमकार
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
0: वो बोर्ड
1: वो,
0: और
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
0: हाँ,
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
0: लेकिन
1: किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन हो
1: गया,
0: और वहीं वो
1: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी?
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ,
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरे
0: लेकिन
1: को
0: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये
1: हाँ,
0: बहुत
1: मैं बता रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था,
0: हाँ
1: तो लोग हंसते थे,
0: हाँ
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ,
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके, मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
0: शक को साफ बोल रहे हो,
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके,
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया, और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरोध खुटवर सर, और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है, और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज़ जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल
1: तुम्हारी एफर्टलेस का दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर के बाद किए हैं?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
0: बंसी कॉल
1: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया,
0: मुखौटा।
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज एंड लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल
1: देखे हमने। अविलाश पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
0: तो वहाँ से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था।

0: वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ। वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था। और MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे एक फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा। ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया। उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया। और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, NSG से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ। उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ। फिर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुँच रहे हैं, सुनाई देना बंद हो गया मुझे वो। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया। अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है। पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे। फिर मैंने एक नाटक बना लिया, कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे। वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छत्र वो केंद्र है। हाँ वो क्योंकि रेडियो का बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूज़िक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया। हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है। और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल।
0: हाँ सुनाता हूँ मैं आपको। उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी कबीरी बता देता हूँ कि
1: बिल्कुल।
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी। उस पर एक कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: तो
0: है,
1: वो क्या कर
0: तो वो
1: सकता है।
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होकर ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गाँव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है।
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है। बहुत जोर से, जोर से।

0: जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या
0: ऐसे बोलता
1: बात
0: था,
1: है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल सॉन्ग
1: बात है,
0: है।
1: बढ़िया गाना
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: आ सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं। और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं। और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे। और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं। अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं। तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ, कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज में?
0: जी स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर हैं वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा।
1: बेचारा।
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो। अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है। बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरुजी रोविंद सर
1: बिल्कुल,
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो
1: वाह,
0: काफ़ी लोग उसमें थे। तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था। गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, पे, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है,
1: वाह वाह,
0: काफी ऐसे फन सॉन्ग है। आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय
1: बिल्कुल,
0: चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह
0: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए।
1: क्या
0: उसके
1: सुंदर है,
0: लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: मेरे को
1: करके,
0: तो बहुत
1: और
0: खुशी हुई
1: सबसे
0: आपसे।
1: अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी
1: तो फिर कभी मिलेंगे
0: 100%
1: और
0: सर,
1: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
0: बहुत
1: वाले
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर
1: हाँ
0: दिया जा रहा है आपको, फिर वहाँ से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं है एक रेडियो में, और मैं
1: बिल्कुल,
0: बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन
1: क्या
0: के बड़ा
1: बात
0: हुआ
1: है,
0: हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूज़िक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है, कि वो
1: क्या
0: गाना
1: बात
0: नहीं
1: है,
0: सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके
1: वहां से
0: साथ बैठा
1: यहां
0: हुआ
1: तक
0: था।
1: का
0: और
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता
1: बिल्कुल
0: रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: यूपी

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए गए थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और इसी के साथ ही समाप्त होती है आज की पहली सभा के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं। शाम के 6 बजे आरंभ किया जाएगा स्थानीय भाषा आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को। तब तक के लिए मुझे यानी शर्मिला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय शाम के ठीक 6 बजे है। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारियाँ दे देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम के 6:05 का समय रहेगा मार कार्यक्रम का। आज आप सुन पाएंगे कुछ मार आधुनिक गीत। गायक कलाकार होंगे जेनी लालरेन पुई हॉबुंग और उनके साथी को आवाज़ में। जेमे कार्यक्रम का समय रहेगा शाम के 6:25 पर। आज आप सुने टीमियले न्यूमे और उनके साथी को आवाज़ में कुछ जेमे भक्ति गीत। 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित की जाएंगे संधार आंचलिक बातुरी।

स्थानीय गीतों कार्यक्रम को जारी रखते हुए 7 बजे सुने डिमासा कार्यक्रम। आज आप सुन पाएंगे कुछ डिमासा आधुनिक गीत। गायक कलाकार होंगे प्रदीप फोंगलो और उनके साथियों का आवाज में। श्रोताओं, कार्बी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20 पर। आज आप सुनिए कुछ कार्बी भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे वैसो मिलिकपी और उनके साथी का आवाज में। और कोकी गीतों कार्यक्रम का समय रहेगा 7:40 पर। आज आप सुन पाएंगे कुछ कोकी पारंपरिक गीत। गायक कलाकार होंगे लुटखोलाल सोंगलोई और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओ 8 बजे सुने किसान वाणी कार्यक्रम, 8:30 बजे का समय रहेगा टीचर्स प्रोग्राम का, 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएंगे समाचार संध्या, 9 बजे सुने आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफ लॉन्ग, और सभा का अंत में यानी कि रात के 9:30 बजे सुने हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं ये थे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखाओं से जुड़े जानकारियाँ।

श्रोताओं, समय हो चला स्थानीय गीतों कार्यक्रम का। आइए सबसे पहले सुनते हैं मार कार्यक्रम। आज सुनते हैं मार आधुनिक गीत। आवाज़ है जेनी ललरेन टिकपुई खबुंग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओ, जेनी ललरेटपुई खबुंग और उनके साथियों के गाए इसी आधुनिक गीतों की साथी मार गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं जेमे कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ जेमे भक्ति गीत। आवाज़ है टमेले न्यूमे और उनके साथियों के आवाज़ में।

श्रोताओं, टिमेले न्यूमे और उनके साथी के आवाज़ में गाए इसी भक्ति गीतों की साथी जेमे गीतों कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। यही आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से शानदार आंचलिक बातोरी।

श्रोताओं, प्रदीप फोंगलो के गाए इसी आधुनिक गीतों के साथ ही डिमासा गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यही आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय गीतों कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं कारवी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कारवी भक्ति गीत। वे आवाज़ है वैसो मिल्कपी और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, वैसो मिलिप्पी और उनके साथी के गाए इसी भक्ति गीतों के साथ ही कादवी गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। हम आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कोकी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कोकी पारंपरिक गीत। आवाज़ है लुटखुलाल चोंगलोई और उनके साथियों की आवाज़ में।

Kristin galvon kivon tu ta chamna ngailuna kivon

0: श्रोताओं, लुटखोलाल चंगलोई और उनके साथी के गाए इसी पारंपरिक गीतों के साथ ही कोकी गीतों कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के कृषि कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रिनी।
2: और मैं हूँ जितेंद्र।
1: आज के इस कड़ी में हम आपसे जानकारी बांटेंगे कद्दू की खेती के विषय पर। हमारे किसान भाई बहन भी हमारे इस जिले में कद्दू की खेती करते हैं और इस फसल को लगाकर काफी फायदा उठा रहे हैं। अगर हमारे किसान भाई बहन वैज्ञानिक तरीके अपनाकर इस फसल की खेती करें तो और भी आर्थिक लाभवान हो सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारे किसान वाणी कार्यक्रम और साथ ही आपको सुनवाएंगे स्थानीय लोक संगीत।
2: श्रोताओं, सबसे पहले कद्दू के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में बात करेंगे। कद्दू के सफल खेती के लिए उपयुक्त जलवायु का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कद्दू एक गर्म जलवायु वाली फसल है, इसीलिए इसके अच्छे विकास के लिए मध्यम से गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः कद्दू की खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस तापमान पर पौधों का अंकुरण वृद्धि तथा फल का विकास अच्छी तरह से होता है। यदि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो बीजों का अंकुरण धीमा हो जाता है और पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर यदि तापमान बहुत अधिक यानी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे फूल और फल बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। इसीलिए कद्दू की खेती के लिए संतुलित और गर्म जलवायु सबसे अधिक अनुकूल मानी जाती है। कद्दू के पौधों को भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। यदि खेत में प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक सीधी धूप मिलती है तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अच्छी गुणवत्ता के फल उत्पन्न होते हैं। अधिक छाया वाले स्थानों पर कद्दू की बेलें कमजोर हो जाती है और उत्पादन भी कम हो जाता है। इसके अलावा हल्की नमी वाली जलवायु कद्दू की खेती के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और फल भी बड़े और स्वस्थ बनते हैं। हालांकि अत्यधिक वर्षा या लंबे समय तक पानी का जमाव कद्दू की फसल के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे जड़ सड़न और अन्य रोगों का खतरा पर बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसी जलवायु और स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ वर्षा संतुलित हो और खेत में पानी का उचित निकास हो सके। कद्दू की खेती के लिए गर्मी और वर्षा दोनों मौसमों में खेती की जा सकती है, लेकिन ठंड और पाले से इसकी फसल को बहुत नुकसान होता है। पाला पड़ने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है और कई बार पौधे नष्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में जहां सर्दियों में पाला पड़ता है, वहां कद्दू की बुवाई इस प्रकार करनी चाहिए कि फसल पर पाले का प्रभाव ना पड़े। भारत जैसे देशों में कद्दू की खेती विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाती है, क्योंकि यहाँ की गर्म जलवायु इस फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। सही तापमान, पर्याप्त धूप, संतुलित नमी और पाले से सुरक्षित जैसे जलवायु संबंधी कारकों का ध्यान रखने पर कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: आइए श्रोताओं, अब बातें करते हैं भूमि के बारे में। कद्दू की फसल खेती के लिए भूमि का सही चयन करना बहुत आवश्यक होता है। यदि खेती के लिए उपयुक्त भूमि चुनी जाए तो पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। कद्दू की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में जल घरण करने की क्षमता भी अच्छी होती है और अतिरिक्त पानी का निकास भी आसानी से हो जाता है। कद्दू के पौधों की जड़ें जमीन में अच्छी तरह फैलती है, इसीलिए ऐसी मिट्टी का चयन करना चाहिए जो भुरभुरी, उपजाऊ और जैविक पदार्थों से भरपूर है। यदि मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर या पथरीली होगी तो जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा और पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। कद्दू की खेती के लिए ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जहां पानी का जमाव ना होता हो। खेत में पानी लंबे समय तक जमा रहने से पौधों की जड़ें सड़ने लगती है और कई प्रकार के रोग भी लग सकते हैं। इसलिए हल्की डाल वाली भूमि या अच्छी जल निकासी वाली भूमि कद्दू की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ साथ मिट्टी का पीएच मान भी संतुलित होना चाहिए। सामान्यत पीएच 6.0 से 7.5 के बीच की मिट्टी कद्दू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है और फल अच्छे आकार के बनते हैं। यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय होगी तो पौधों को पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, जिससे उत्पादन कम हो सकता है। इसके अलावा कद्दू की खेती के लिए ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जहां पर्याप्त धूप मिलती हो और खेत खुला और हवादार हो। खुली जगह में पौधों की बेलें आसानी से फैलती है और सूर्य का प्रकाश मिलने से पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया बेहतर होती है। खेत में पहले से पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाई जाए तो मिट्टी की उर्वरक और भी बढ़ जाती है। इससे मिट्टी मुलायम रहती है और पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। इस प्रकार यदि किसान कद्दू की खेती के लिए उपजाऊ भुरभुरी अच्छी जल निकासी वाली और संतुलित पीएच वाली भूमि का चयन करते हैं तो उन्हें अच्छी गुणवत्ता के फल और अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
2: श्रोताओं, अब बातें करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। उन्नत किस्में ऐसी होती है जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से विकसित किया गया है ताकि वे अधिक उपज दे, रोगों के प्रति सहनशील हो और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छी तरह बढ़ सके। इन किस्मों के उपयोग से किसानों को कम समय में अधिक और बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। उन्नत किस्मों के फल आकार में समान स्वाद और बाजार में अधिक मांग वाले होते हैं, इसीलिए इनका चयन करना खेती की सफलता के लिए लाभदायक माना जाता है। कद्दू के कुछ प्रमुख उन्नत किस्मों में पंजाब सम्राट, पंजाब 56, कद्दू 1, काशी उज्ज्वल, काशी हरित, अर्का सूर्य और अर्क चंदन जैसे किस्में शामिल है। ये किस्में उच्च उत्पादन देने वाली और कई सामान्य रोगों के प्रति सहनशील मानी जाती है। इन किस्मों के फल आकार में बड़े आकर्षक और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। जैसे कि काशी उज्ज्वल किस्म के फल गोल और मध्यम आकार के होते हैं और ये किस्म अच्छी पैदावार देने के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार अर्का सूर्य किस्म भी अधिक उत्पादन देने वाली और जल्दी तैयार होने वाली किस्म है, जिससे किसानों को कम समय में अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। उन्नत किस्मों का चयन करने समय किसान को अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी की स्थिति और

0: बाजार की मांग को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि क्षेत्र की जलवायु के अनुसार सही किस्म चुनी जाए तो फसल की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही प्रमाणित बीजों का उपयोग करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अच्छे बीज के पौधों का अंकुरण बेहतर होता है और पौधे स्वस्थ विकसित होते हैं। इस प्रकार कद्दू की खेती में उन्नत किस्मों का उपयोग करने से किसान अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, कद्दू की खेती के लिए कुछ और उन्नत किस्मों के बारे में आइए जानते हैं। काशी धवल। इस कद्दू किस्म की बुवाई अप्रैल से लेकर जलवायु के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। इसका फल बेलनाकार, गूदा सफेद, मोटाई औसतन 8.5 सेंटीमीटर एवं फल का औसत वजन 12 किलोग्राम होता है। फल की लंबाई आकार 90 सेंटीमीटर एवं गोलाई 80 सेंटीमीटर तक हो जाती है। एक पौधे में 2 से 3 फल लगते हैं, जिनकी तुराई 100 से 105 दिनों में की जा सकती है। इस प्रजाति के लता की लंबाई 7 से 8 मीटर तक होती है और मादा फूल शुरुआत से 22 से 24 गांठों के अंतर पर प्रारंभ होते हैं। फल को तुराई उपरांत सामान्य तापक्रम एवं सूखे स्थान पर लगभग 4 से 5 महीनों तक भंडारित कर सकते हैं। फल में गूदा अधिक होने के कारण ये पेठा बनाने हेतु सर्वोत्तम है। इस किस्म से औसतन उत्पादन 60 टन प्रति हेक्टेयर तक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये किस्म उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के किसानों के बीच अधिक प्रचलित है। आइए जानते हैं काशी उज्ज्वल के बारे में। इस कद्दू किस्म की बुवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। फल गोल, गूदे की औसत मोटाई 7 सेंटीमीटर एवं फल का वजन 10 से 12 किलोग्राम होता है। एक पौधे में 3 से 4 फल लगते हैं। ये किस्म पेठा एवं बरी बनाने हेतु उत्तम है। इसकी उत्पादन क्षमता 55 से 60 टन प्रति हेक्टेयर है। इसका फल बीज बुवाई के 110 से 120 दिनों के बाद तुराई करने लायक हो जाता है। फल का सामान्य तापक्रम 4 से 5 महीने तक सूखे एवं छायादार स्थान पर भंडारित करते हैं। इस किस्म को पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए अनुमोदित किया गया है। ये पेठा कद्दू की प्रथम किस्म है जिसका अनुमोदन भारतीय स्तर पर किया गया है। काशी सुरभि। इस कद्दू किस्म की बुवाई अप्रैल से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। इस किस्म का फल लंबाई गूदे को औसत मोटाई 6 से 7 सेंटीमीटर एवं फल का वजन 9.50 से 10 किलोग्राम होता है। एक पौधे में औसतन 3 से 4 फल लगते हैं। ये किस्म पेठा एवं बरी बनाने हेतु उत्तम है। इसकी उत्पादन क्षमता 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर है।
0: श्रोताओं, आप बीज की बात करें तो बीजों को बोने से पहले ठीक प्रकार से तैयार किया जाए तो उनका अंकुरण अच्छा होता है, पौधे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं और फसल में रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इसीलिए किसानों को हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का चयन करना चाहिए। बीज ऐसे पौधे से लिए जाने चाहिए जो पूरी तरह विकसित, रोग मुक्त और अधिक उत्पादन देने वाले हो। अच्छे बीजों का चयन करने से पौधों की वृद्धि तेज होती है और खेत में समान रूप से अंकुरित होता है, जिससे फल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करना भी बहुत आवश्यकता होता है। बीज उपचार करने के से बीजों में मौजूद फाफूद और अन्य रोगजनक नष्ट हो जाते हैं, जिससे पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षा मिलती है। कद्दू के बीजों को फाफूदनाशक दवा जैसे कार्बनडेजिम या थीरम से उपचारित किया जाता है। लगभग 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाकर बीजों को अच्छी तरह उपचारित किया जाता है। लगभग 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाकर बीजों में अच्छी तरह मिला दे। इसके अलावा कुछ किसान बीजों को बोने से पहले 10 से 12 घंटे तक पानी में भी रख सकते हैं, जिससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और प्रारंभिक वृद्धि तेज होती है। बीजों को उपचारित करने के बाद उन्हें छाया में हल्का सुखा लिया जाता है ताकि बुवाई के समय वे आसानी से बोया जा सके। इसके अतिरिक्त बीज की मात्रा का भी सही ध्यान

0: रखना चाहिए। एक हेक्टर क्षेत्र में कद्दू की खेती के लिए लगभग 3 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को हमेशा साफ, सुखी और सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए ताकि उनमें नमी या कीटों का प्रकोप ना हो। यदि बीज अच्छी तरह तैयार और उपचारित हो तो अंकुरण दर बढ़ती है, पौधे मजबूत बनते हैं और किसानों को अधिक और बेहतर गुणवत्ता की उपज प्राप्त होती है।
1: आइए जानते हैं खाद और उर्वरक के विषय पर। कद्दू एक बेलदार और तेजी से बढ़ने वाली फसल है, इसीलिए इसे पर्याप्त पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि खेत में पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, बेलें मजबूत बनती है और फल भी बड़े और स्वस्थ विकसित होते हैं। कद्दू की खेती में जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों दोनों का संतुलित उपयोग करना लाभदायक माना जाता है। खेत की तैयारी के समय सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है। समानताएं, एक हेक्टर खेत में लगभग 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी चाहिए और इसे खेत जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कद्दू की खेती में महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। एक हेक्टर क्षेत्र के लिए लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय मिट्टी में मिला दी जाती है। शेष नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटकर पौधों की वृद्धि के दौरान टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। नाइट्रोजन के लिए यूरिया फर्टिलाइजर, फास्फोरस के लिए डीएपी फर्टिलाइजर और पोटाश के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। इन उर्वरकों के संतुलित उपयोग से पौधों की वृद्धि तेज होती है, फूल और फल अच्छी संख्या में बनते हैं और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसके अलावा जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और हरी खाद का उपयोग भी कद्दू की खेती में लाभदायक माना जाता है। जैविक खाद मिट्टी की संरचना को सुधारती है और पौधों को धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करती है। समय समय पर खेत की निराई गुराई करते रहनी चाहिए ताकि उर्वरकों का पूरा लाभ पौधों को मिल सके। यदि किसान खाद और उर्वरकों का संतुलित और सही समय पर प्रयोग करते हैं तो कद्दू की फसल में पौधों की वृद्धि बेहतर होती है, फल अधिक लगते हैं और अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
0: बुवाई की विधि के बारे में बात करते हैं। खेत की 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना दे और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, सड़ी हुई घास मिला दे। इसके बाद खेत में उचित दूर पर गड्ढे या बेड बना सकते हैं। एक गड्ढे में 2 से 3 बीज बोए जा सकते हैं और बाद में जब पौधे निकल आते हैं तो उनमें से स्वस्थ और मजबूत पौधे को ही रखें। कद्दू की बुवाई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 2 से 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है। ये दूरी इसीलिए आवश्यक होती है क्योंकि कद्दू की बेलें बहुत फैलती है और उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए होता है। बीजों को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है और उसके ऊपर हल्की मिट्टी दी जाती है। यदि बीजों को बहुत गहराई में बो दिया जाए तो अंकुरण में कठिनाई हो सकती है, इसीलिए उचित गहराई का ध्यान रखना चाहिए। बुवाई के बाद खेत में हल्की सिंचाई कर देना चाहिए ताकि बीजों को अंकुरित होने के लिए आवश्यक नमी मिल सके। कद्दू की बुवाई का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में कद्दू की बुवाई अलग अलग मौसम में की जा सकती है। गर्मी की फसल के लिए बुवाई जनवरी से मार्च के बीच की जा सकती है, जबकि वर्षा ऋतु की फसल के लिए जून से जुलाई के बीच बुवाई का करना उपयुक्त माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में शरद ऋतु में भी कद्दू की खेती की जाती है। यदि किसान सही समय पर और उचित विधि से बुवाई करते हैं

0: तो पौधों का अंकुरण अच्छा होता है, बेलें तेजी से भरती है और अच्छी अधिक मात्रा में कद्दू की उपज प्राप्त होती है।
1: कद्दू की खेती के लिए बुवाई का समय मुख्य फसल के रूप में पेठा कद्दू की बुवाई जून के दूसरे पखवाड़े में करते हैं। उत्तर के मैदानी भागों में जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था हो वहां पर इसकी बुवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में की जा सकती है। दक्षिण भारत में इसकी बुवाई जून से लेकर अगस्त तक करते हैं, जबकि उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में इसकी बुवाई अप्रैल से मई में की जाती है। कद्दू की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन। कद्दू बीज की बुवाई खेत में नमी की पर्याप्त मात्रा रहने पर ही करनी चाहिए, जिससे बीजों का अंकुरण और वृद्धि अच्छी प्रकार हो। बरसात वाली फसल के लिए सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी की फसल के 5वें दिन सिंचाई करते हैं। तने की वृद्धि, फूल आने के समय और फल की बरवार के वक्त पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
0: यदि बीज उगने के लिए खेत में पर्याप्त नमी ना हो तो पहली सिंचाई बुआई के बाद छिद्र कर दे। दूसरी और तीसरी सिंचाई भी जल्दी यानी 4 से 6 दिन के अंतर करें। ऐसा करने से बीज छिद्र और आसानी से उग आएगा। ग्रीष्म ऋतु की फसल में 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकतानुसार 7 से 10 दिन के अंतर से सिंचाई करते रहना चाहिए। बरसात की कद्दू फसल में प्राय सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वर्षा लंबे समय तक ना हो तो सिंचाई आवश्यक कर देना चाहिए। बरसात की फसल में उचित जल निकास की व्यवस्था का होना भी आवश्यकता है, ताकि खेत में वर्षा का फालतू पानी इकट्ठा ना होने पाए।
1: कद्दू की फसल में खरपतवार नियंत्रण। वर्षाकालीन कद्दू फसल में खरपतवार की समस्या अधिक होती है। बीज अंकुरण से लेकर प्रथम 25 दिनों तक खरपतवार फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं। इससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है और पौधे की बरवार रुक जाती है। खेत से समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशी के रूप में स्टाम्प रसायन 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव बुवाई के तुरंत बाद करते हैं। खेत से पहली बार खरपतवार बुवाई से 20 से 25 दिनों के अंदर निकाल देते हैं। खरपतवार निकालने के बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ानी चाहिए, जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है।
0: अब श्रोताओं, कीटों के बारे में बात करते हैं। कद्दू की खेती में कई प्रकार के कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इन कीटों का समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो फसल की वृद्धि रुक सकती है और उत्पादन भी काफी कम हो सकता है। इसीलिए किसानों के लिए ये आवश्यक है कि वे प्रमुख कीटों की पहचान करें और समय पर उनका प्रबंधन करें। कद्दू की फसल में सामान्यतः फल मक्खी, लाल कद्दू बीटल और एफिड जैसे कीट अधिक पाए जाते हैं। ये कीट पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। कद्दू की फसल में सबसे अधिक नुकसान पहुंचने वाला कीट फल मक्खी होता है। ये मक्खी कच्चे फलों में अंडे देते हैं और उनसे निकलने वाले कीड़े पर फल के अंदर ही गुदा खाने लगते हैं, जिसे फल सड़ जाते हैं और खाने योग्य नहीं रहते। इसके अलावा लाल कद्दू बीटल भी एक प्रमुख कीट है, जो पत्तियों को खाकर उनमें छेद कर देते हैं। इससे पौधों की भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसी प्रकार एफिड या चेपा नामक छोटा कीट पौधों की कोमल पत्तियों और तनों से रस चूसते हैं, जिसे पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधों की वृद्धि रुक सकती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए खेत की नियमित निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए और खरपतवार को समय समय पर हटाना चाहिए, क्योंकि कई कीट वहीं से फैलते हैं। यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो जाए तो नियंत्रित मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मेलाथियत या इमिडोल क्लोप्रिड। इसके अलावा जैविक उपायों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे नीम के घोल का छिड़काव करना यदि किसान समय पर कीटों की पहचान करके उचित नियंत्रण उपाय अपनाते हैं तो कद्दू की फसल को नुकसान

0: स्थानीय लोकगीत के बाद जारी रखते हैं हमारी बातचीत को। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं रोकथाम के बारे में। कद्दू की फसल में लगने वाले कीटों का समय पर रोकथाम करना बहुत आवश्यकता होता है, क्योंकि यदि कीटों को शुरुआत में ही नियंत्रित कर लिया जाए तो फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। कद्दू की खेती में रोकथाम के लिए सबसे पहले खेत की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। खेत में खरपतवार को समय समय पर निकालते रहना चाहिए, क्योंकि कई कीट इन्हीं खरपतवारों में पनपते हैं और बाद में फसल पर आक्रमण कर देते हैं। इसके अलावा खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए और पौधों के आसपास की मिट्टी को समय समय पर ढीला करने रहना चाहिए, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। कीटों की रोकथाम के लिए कुछ यांत्रिक और जैविक उपाय भी बहुत प्रभावी होती है। यदि फसल में कीट लगे हुए पत्ते या फल दिखाई दे तो उन्हें तुरंत तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि कीटों का फैलाव ना हो सके। फल मक्खी से बचाव के लिए खेत में फलों को ज़मीन पर गिरने नहीं देना चाहिए और खराब फलों को तुरंत हटा देना चाहिए। इसके अलावा नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जो कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है। खेत में पक्षियों के बैठने के लिए लकड़ी या बांस की छोटी छोटी डंडियां लगाने से भी लाभ होता है, क्योंकि पक्षी कई हानिकारक कीटों को खा जाते हैं। यदि कीटों का प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए उचित मात्रा में दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, जैसे मेलाथियन या इमिडाक्लोप्रिड। इन दवाओं का प्रयोग विशेषज्ञों को सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि फसल और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहे। छिड़काव करते समय सुबह या शाम का समय चुनना बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय हवा कम चलती है और दवा का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार यदि किसान समय समय पर निरीक्षण करे और उचित रोकथाम के उपाय अपनाए तो कद्दू की फसल को कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कद्दू की फसल के विषय पर, और आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रहे। समय आ चला है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि हमारे किसान वाणी कार्यक्रम को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आकाशवाणी हाफलोंग फेसबुक में जाकर

0: सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और अगर आप अपना परामर्श देना चाहें तो आप कमेंट कर बता भी सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। मैं आपकी दोस्त रिनी,
1: मैं जुदित,
0: नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं टीचर से जुड़े कार्यक्रम, प्रस्तुत कर रही है अंकिता पाल ने।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा खास कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम, और मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता। आज के इस विशेष टीचर्स प्रोग्राम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के डिजिटल दौर में लगभग हर घर, हर स्कूल और हर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम और डिजिटल सेफ्टी। आज इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बच्चे पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक हर काम के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जहां इंटरनेट हमें कई सुविधाएं देता है, वही थोड़ी सी लापरवाही हमें साइबर फ्रॉड, फेक अकाउंट्स, ऑनलाइन बुलिंग और कई दूसरे साइबर क्राइम्स का शिकार भी बना सकती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्टूडेंट्स को सही समय पर डिजिटल अवेयरनेस और सेफ इंटरनेट यूज के बारे में जानकारी दी जाए, और इसमें टीचर्स और पेरेंट्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डीमा हसाओ कालाचांद के सीनियर लेक्चरर सर अरूप देव। तो आइए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर का स्वागत करते हुए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हफलोंग के स्टूडियो पे।
1: नमस्कार श्रोताओ, धन्यवाद आप सभी को मुझे बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में।
0: जी जी सर। सर, जैसे हमारे कार्यक्रम का विषय हमने हमारे श्रोताओं को बता दिया है, तो उससे जुड़ के मैं पहली चीज आपसे यही पूछूंगी कि जैसे आजकल साइबर क्राइम शब्द बहुत सुनने को मिलता है, तो सबसे पहले आप सिंपल शब्दों में बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है।
1: तो पहले मैं इसको बताने के पहले इसको बैकग्राउंड में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ।
0: जी सर।
1: देखिए, आजकल का जो जमाना है इसमें रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं रह गया, वो लगभग समान ही है। रियल वर्ल्ड में आप जो जो काम कर पाते हैं, सेम काम आप डिजिटल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट, गेमिंग बोलिए, सोशलाइजिंग बोलिए, शॉपिंग बोलिए, बैंकिंग बोलिए, क्या नहीं आप कर सकते। जो जो डिजिटल वर्ल्ड में कर सकते हो, रियल वर्ल्ड में भी वही हो रहा है।
0: जी सर।
1: तो इस वजह से हमारा इंटरनेट एसेस सब का पास में आ गया। इस वजह से जो खतरा समाज में था, रियल वर्ल्ड में जो खतरा व क्राइम था, वो आप डिजिटल वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो जनरली जो साइबर क्राइम हम लोग बोलते हैं, साइबर क्राइम, साइबर बोलने से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन बाय टेक्निकल कनेक्शन इस शब्द को समझते हैं। साइबर एंड क्राइम तो दोनों ही एक ही शब्द है, दोनों को अगर जुड़ा लेंगे तो आपको एक पूर्ण शब्द मिलेगा। तो मैंने जैसे बताया कि क्राइम जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, वही आजकल साइबर वर्ल्ड में हो रहा है, क्योंकि उस दोनों में बीच में कोई अंतर नहीं है। तो साइबर क्राइम हम लोग अगर बोलने जाने से, जो भी क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी और इनलीगल एक्टिविटी जो पहले समाज में होता था, वही आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है थ्रू इंटरनेट और थ्रू कोई टूल्स जैसा कि मोबाइल डिवाइसेस लेके जो इलीगल एक्टिविटी हो, वही हम लोग साइबर क्राइम कह सकते हैं। साइबर क्राइम में और भी आ जाता है कि आपको जो ऑनलाइन बिहेवियर में जो आपको थ्रेटनिंग मिलता है, जैसा कि हैरासमेंट, ह्यूमिलेशंस, ये भी साइबर क्राइम को अंदर में आ जाता है। तो साइबर क्राइम ये एक कोई व्यक्ति इंडिविजुअली आपको कर सकता है, कोई व्यक्ति आपको, ये ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट है। तो उसके लिए कोई टूल भी यूज कर सकता है, और कभी आपका मोबाइल बा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका टूल और उसको टारगेट हो सकता है, और कभी खुद आप उसका टारगेट हो सकता है।
0: जी जी।
1: तो साइबर क्राइम वही है।
0: जी सर। तो जैसे अभी आपने बताया है साइबर क्राइम के बारे में, हमारे श्रोताओं को शायद इससे बहुत समझने में आसानी हुई होगी। तो सर, आपके हिसाब से स्कूल में टीचर्स बच्चों को सेफ इंटरनेट यूज और डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कैसे जागरूक कर सकते हैं?
1: इसको बारे में जानने से पहले मैं एक साइबर क्राइम को बहुत सारा टाइप्स है, उस बारे में जस्ट मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ।
0: जी जी।
1: ये टाइप में आपको देखिए किस तरह का साइबर क्राइम हम लोग आजकल फेस करते हैं। जैसा कि टॉपिक बहुत ही बड़ा है, फिर भी मैं संक्षेप में ये दो तीन टाइप कहना चाहता हूँ। फर्स्टली हो गया आपका साइबर बुलिंग, देन हो गया ग्रूमिंग, देन हो गया फिशिंग, देन हो गया सेक्सुअल एब्यूज, देन हो गया आपको आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इम्पर्सोनेशंस, देन हैकिंग एंड मैलवेयर। तो इस कैटेगरी में हम लोग अगर 6 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में देखें तो बेसिकली ये 6 कैटेगरी में साइबर क्राइम होता है। तो आपने अभी जो क्वेश्चंस किया है कि सेफ इंटरनेट यूज और डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक छात्र को कैसा होना चाहिए, वो क्या करे उसके लिए, तो देखिए, सेफ इंटरनेट यूज के लिए फर्स्टली जो है आपको डिवाइस का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: तो जब भी आप कोई नया डिवाइस लिए उसको डिफॉल्ट लॉगिन को चेंज कीजिए, डिफॉल्ट लॉगिन इवन डिवाइस को इवन रोटर्स को। देन आप इंस्टॉल कीजिए एंड एक्टिवेट कीजिए जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। देन उसके बाद आपको जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप अपना डिवाइस के साथ लिंक करते हैं तो उसको हमेशा स्कैन कीजिए।
0: जी जी।
1: एंड आपको डिवाइस को पिन प्रोटेक्ट करना चाहिए। पिन देके जैसे हम लोग मोबाइल पर आजकल सभी बच्चा को इस बारे में पता है, वो पिन प्रोटेक्टेड होना चाहिए। एंड जहाँ में फ्री चार्जिंग मिलता है बाद जहाँ में फ्री वाईफाई मिलते हैं उसी में हमारा बच्चा लोग हमारा जो छात्र है वो उसमें कभी ना जाए अगर वो ट्रस्टेड ना हो। वाईफाई ट्रस्टेड ना हो और आप किसी ने आपको ऑफर किया कि फ्री चार्जिंग के लिए उसमें आप ट्रस्ट ना करें तो उसमें आप मत ये करें क्योंकि आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका मोबाइल में मालवेयर व एंटीवायरस आ सकता है।
0: जी सर।
1: सेकेंडली देखिए, टीचर को ये अंडरस्टैंड करना है अगर कोई बच्चा इंटरनेट में आपका प्रॉब्लम मिला व आपको साइबर क्राइम का शिकार हो गया, टीचर का फर्स्ट दायित्व ये है कि उसको उस सिचुएशंस में उसका बिहेवियर को एनालिसिस करें। ठीक है, तो वो डिजिटल स्पेस में स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है उनको देखें, तो उनको देखने से उनको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उस सिचुएशन को कैसा डील करना है। देन उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है उस साइबर क्राइम के वजह से, उससे बचाने के लिए टीचर को उस बच्चे को साथ डिजिटल स्पेस के बारे में फ्रीली डिस्कस करना चाहिए, उनको कहाँ में क्या मिल रहे। देन उसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए बच्चा को जो साइबर वर्ल्ड में बा हम लोग जब इंटरनेट यूज करते हैं, बिकॉज इंटरनेट इज नाउ ए डेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ।
0: बिल्कुल सर।
1: तो बच्चे लोग पढ़ाई में भी वो यूज करते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है जी हमको ये चीज करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। देन आपको ये भी है कि ये हम लोग बोलते हैं डिजिटल बिहेवियर है, जैसा किसी का साथ आपको पर्सनल अकाउंट से किसी को टैगिंग करना बाय प्लेगरिज्म बाय फॉरवर्डिंग करना मैसेजेस, वो वगैरह आप जानबूझ के बा पहले उस व्यक्ति से परमिशन से लेके करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। देन बच्चा को साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहिए, साइबर क्राइम का जो नेशनल सपोर्ट सिस्टम है, साइबर क्राइम होने से हमको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। देन एक साइबर आर्मीज बनाना चाहिए हर स्कूल्स में, बच्चा लोग आपस में प्यार में कि हम जोरा जोरा में अगर साइबर आर्मीज बना दिया तो उन लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम इंटरनेट जब हम यूज करते हैं बच्चा लोग वहाँ में हम रेस्पॉन्सिबल कैसा रहे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम रेस्पॉन्सिबली कैसा इंटरनेट को यूज़ करें। तो इसके लिए पहले एक 5 R's का एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, जैसा कि रेपुटेशंस, वो हमको पहला हमारा खुद का रेपुटेशन मेंटेन करना चाहिए ऑनलाइन में जब भी हम हैं डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जो हर एक स्टेप हमारा फुटप्रिंट हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो फुटप्रिंट बन जाता है। तो इसीलिए हमारा खुद का रेपुटेशन खुद ही रखना है, कहाँ जाना है कहाँ क्या चीज देखना है क्या नहीं देखना है वो हमको जान लेना चाहिए। देन और एक चीज है दूसरा रेस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, रेस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरा को प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए ये, एंड खुद का रेस्पेक्ट और ओन वैल्यूज को उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट हो गया आपका रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट ये है कि कोई चीज मैसेज फॉरवर्ड करने में बा लाइक करने में बा पोस्ट करने में आपको रीथिंक करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये मैं अगर पोस्ट कर रहूंगा तो उस व्यक्ति के ऊपर बा उस सिचुएशन के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा।
0: जी जी,
1: इसको लिए एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देन उसको बात आ रही है कि आप अगर शिकार बन गए हैं अकाउंट से बा प्रोफाइल से आपको डिस्टर्ब आ रहा है तो उसको रिपोर्ट कैसा करें, रिपोर्ट एंड उसको ब्लॉक कैसा करें उस प्रोफाइल को, ये भी आपको जानना चाहिए। देन रेजिलेंस होना चाहिए कि रेजिलेंस इन दैट सेंस आपको वो हार्ड एंड फास्ट होना नहीं चाहिए, कभी कभी चीजें एक्सेप्ट भी करना चाहिए एंड कभी कभी चीज को क्या करना चाहिए कि आपको जो साइबर क्राइम होता है उससे जब को आपको जो इमोशनली एक इफेक्ट आ जाता उसको आप हैंडल करना जानना चाहिए। तो ये मतलब नहीं कि आपको पास कोई आपको कमेंट कर दिया और आप इमोशनली एकदम डिस्टर्ब होकर घर बैठ जाए साइबर वर्ल्ड यूज नहीं करें, नहीं ऐसा नहीं, उसको आप एक्सेप्टेंट करना चाहिए एंड उससे आपको निकलना चाहिए, निकलना आना पड़ेगा, इसलिए रेजिलियंट होना चाहिए। कोई किसी ने बहुत बता दिया आपको बारे में दो शब्द बुरा कह दिया कि आप उससे हट जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको रेजिलियंस होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि कैसा हम नेगेटिव कमेंट्स को कैसा ट्रीट करें, ये सारा है। एंड बिसाइड दिस कुछ सोशल मीडिया एटिक्यूट है, स्पेशली जो है कि आपको माइंडफुलनेस होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: केयरलेस होना नहीं चाहिए। केयरलेस होंगे तो आपको विपद है। एंड हर चीज को रिएक्ट और रेस्पॉन्स दोनों भी है, लेकिन रिएक्ट करना नहीं चाहिए। रेस्पॉन्ड रिप्लाई से होता है, रिएक्ट करने से आपको रिएक्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एक्शन। तो एक्शन जब होगा तो खराब हो जाता, तो इसलिए आप उसमें रेस्पॉन्सिव होने से अच्छा है, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन से अच्छा है, रिप्लाई करने से अच्छा है विथ योर क्लियर कॉन्शियसनेस आपको करना चाहिए। देन टॉलरेंस होना चाहिए आपको ऊपर, हेट होना नहीं चाहिए। देन आपको इंडिफरेंट किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो सारा कुछ सारा स्टेप्स है, वो अगर फॉलो किया को उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया एटीट्यूड। तो उसमें एक थ्री प्रोंग्ड एक अप्रोच है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये थ्री प्रोंग्ड अप्रोच अगर कोई स्टूडेंट याद में रख दिया तो उसके लिए साइबर क्राइम से बचने का बहुत बड़ा उपाय है। पहला है स्टॉप थिंक एंड क्लिक। कोई चीज़ अगर आपने देख लिया पहले उसको स्टॉप करिए, सोचे, उसको लाइक करने का पहले, उसको पोस्ट कर रिपोस्ट करने का पहले एक बार सोचे, स्टॉप देखे, थामे, उसके बाद सोचे, देन उसके बाद क्लिक करें। क्योंकि एक बार आप अगर क्लिक कर दिया वो दोबारा डिलीट नहीं होगा, उसको एक फुटप्रिंट बन जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा मोबाइल से व डिवाइस से डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं होता। जो भी चीज़ है वो डिलीट वो इंटरनेट में रह जाता है।
0: जी जी।
1: तो स्टूडेंट को इस बारे में बताना बहुत ही जरूरी है।
0: जी सर बिल्कुल, यही सब चीजें आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आपने एक एक 5 आर्स के बारे में बताया है, ये सब अगर बच्चों को स्कूल में ही नॉलेज दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: हाँ, वही बहुत जरूरी है वो।
0: जी सर। तो श्रोताओं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस विषय पर हमारे अतिथि से बात करते हुए, पर आज समय की पाबंदी के कारण हमें इस कार्यक्रम को यही विराम देना होगा। इस कार्यक्रम का अगला भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते शनिवार रात 8:30 पर। तब तक के लिए कीजिए ये थोड़ा सा इंतजार और जुड़े रहिए आकाशवाणी हाफलोंग के साथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टीचर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को प्रस्तुत की थी अंकिता पाल ने। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का।

0: plastic.
1: सो तो अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीत, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी की हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, थोड़ी ही देर में सुनते हैं हिंदी में समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संग्रह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलोंग।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से मैं सुपर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके दिल से जुड़ा कार्यक्रम यानी हेलो हाफलोंग कार्यक्रम में। ये एक विशेष मंच है जहाँ हर श्रोता हमारे साथ एक खास अनुभव को साझा करते हैं और हम सभी एक अद्वितीय संगीत के माध्यम से जुड़ते हैं। आइए इस हफ्ते की सफर को शुरू करते हैं और सुनते हैं पहली फरमाइश। हेलो हाफलोंग,
1: नमस्कार मैडम। मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: हेलो जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में।
1: मैं पसंद की गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है चलते चलते। गीत के बोल है, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, गायक शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर। सबसे पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी हाफलैंड में जुड़े सभी लोगों को, अपने परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेली को और हाफलैंड में जुड़े सभी दोस्तों भाई बहनों को हेलो। एक्टर रेडियो ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को
0: जी जरूर, हम आपके फरमाइश का ये गाना जरूर सुनवाएंगे और आप सुनते रहिए हेलो हाफलैंड।

0: हेलो हाफ लॉन्ग।
1: हेलो, नमस्कार बहन जी। बहन
0: हेलो जी, नमस्कार। आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मेरा नाम है जगदीश राय गर्ग और मैं मानसा पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: जी, तो आप कैसे हैं?
1: बहुत मजे में है बहन जी, बहुत आनंद में है। और अब आपसे बात हो रही है तो और भी मजे में हो गए
0: तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: बहन जी। आज मैं मुकेश जी का गाया हुआ गीत है, फिल्म है बेदर्द जमाना क्या जाने। नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे, नैना है जादू भरे ओ हमसे जो छुप छुप जुल्म करे ओ गोरी तोरे, नैना है जादू भरे ओ तोरे, नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे, नैना है जा

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: हेलो हेलो हफलांग,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गोलाघाट असम से रमेश बत्रा बोल रहा हूँ।
0: जी, आप कैसे हैं और आपके वहाँ मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी धूप चल रहा है, इधर गर्मी है।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, बोलना चाहता हूँ। लाकी, भाईकोन मुंडा, अमोल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, योगेंद्र रंकी और अंजलि बसुमतारी।
0: जी, ये गाना हम आपके लिए और आपके अपनों के लिए जरूर सुनवाएंगे।

0: हेलो हाफलोंग।
1: हेलो हाफलोंग।
0: हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, नमस्कार। मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ रंगापरा सोनीतपुर असम से। धन्यवाद
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम। आप कैसे हैं?
0: मैं तो ठीक हूँ।
1: जी, हमारे यहाँ पर भी बहुत गर्मी चल रहा है। कल से 38 डिग्री सेल्सियस तक चला था।
0: गर्मी का मौसम है, थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा।
1: जी।
0: तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जी, फिदा फिल्म का वो नजर नजर हमें दोस्तों को याद कर सकता है। जी,
0: जरूर।
1: मेरा दोस्त है भाईकोन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्रो, रुनु पात्रो, लाकी और जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली एनटीपी और विनाश तेली है, हितेंद्र दास है, दिनेश शर्मा है, प्रणति दत्तो है, कांचन हाजोंग, हमारे रमेश तेला, रमेश प्रजापति, के राम नरेश, पूरन वर्मा, सुनील झा, योगेश जंगरे, बहुत सारे दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ और आपको भी मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके फरमाइश का ये गाना जरूर सुनवाएंगे और आप सुनते रहिए हेलो हाफलोंग।

0: बहुत दिक्कत नहीं है, क्या किया जाए, सहना तो पड़ेगा ही
1: जी, कुछ किया नहीं जा सकता। ये तो
0: आकर्षण आप लोग कार्यक्रम होते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: सिलसिला अपन का गीत है।
1: अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और हम आपके फरमाइश का ये गाना जरूर सुनवाएंगे।

0: हेलो हाफलोंग।
1: हेलो आप लोग।
0: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक है, बहुत गर्म पड़ रहा है।
0: जी वो तो है। तो आप बता दीजिए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: कौन दिन का गाना बजेगा?
0: जी जरूर, हम आपके फरमाइश का ये गाना जरूर सुनवाएंगे। और आप
1: हाँ
0: सुनते
1: धन्यवाद।
0: रहिए हेलो हाफलोंग।

दोस्तों, इसी फरमाइश गीत के साथ आज के हेलो हाफलॉन्ग कार्यक्रम की पहली एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। कल यानी रविवार रात 9 बजे हम फिर से हाजिर होंगे हमारी दूसरी एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त सुबर्णा को दीजिए इजाज़त।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलोंग। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वतः गीत और संगीत के सफर को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह के गाए कबीर सिंह फिल्म के ये गीत।

श्रोताओं, चीते गीत की इस गीत के साथ ही आज के हमारे दूसरी सेवा कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, इस समय रात के ठीक 10 बजे है। अब हमें यानी कि मनु कहार और तकनीकी सहायक रंजीत आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। कल की पहली सभा में इनके सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होंगे। तब तक ले शुभ रात्रि, जय हिंद।